0: ग्राहक को संतुष्टि नै हाम्रो सफलता। सम्पर्क का लागि कुमार श्रेष्ठ 9851242883 9842228883 र कृष्ण श्रेष्ठ 9864002041।
1: वैतेश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरिकोट दोलखा।

0: papás de uno de amor de Dios, existiendo solo de amigos.
1: जिसे अपनी दुनिया समझा वही दुनिया उजाड़ गई, जिसके लिए हर दुआ की वही मुझे छोड़ गई। हमने तो दिल देकर सिर्फ मोहब्बत मांगी थी और वो किसी और के लिए हमें तोड़ गई।

और वो फिर भी किसी और की होकर गई। अब न मोहब्बत पे भरोसा है, न किसी अपने पे यकीन।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: अन्ठानब्बे तिरसठी अन्ठाउन्न शून्य तीन सय तेत्तीस
1: प्रोपाइटर नवीन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मेसिनरी स्टोर एण्ड सप्लायर्स बिगु गाउँपालिका चार सिंगटी दोलोखा

0: அப்பே ஒய்னே பாடே சோட்டி வாஸ்கோ டிவி போக்கிற இடியோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்தோ
1: கட்டை பரிலைலை வாஸ்கோ டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்ரியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொண்டி பனவுனே புக்கா உலாட்ட ஒய்னே
0: त्यति कुरामा पनि चिन्ता गर्नु पर्छ त सदरमुकाम चरीकोटबाट चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सकेको नि
1: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा डिस्काउन्ट सिटीमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844-39-81-42 र 9844-061-814
4: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 MHz